ये चांद बीते जमानों का आईना होगा, ये चांद बीते जमानों का आईना होगा।

बरसता भीगता मौसम धुआं धुआं होगा, बरसता भीगता मौसम धुआं धुआं होगा, पिघलती शम्मों पे दिल का मेरे गुमा होगा।

0: गली के मोड़ पे सुना सा कोई दरवाजा, गली के मोड़ पे सुना सा कोई दरवाजा, तरसती आंखों से रास्ता किसी का देखेगा, निगाह दूर तलक जाके लौट आएगी,
1: क्या बात है।
0: निगाह दूर तलक जा

अपने खातर दुनिया मर दी मिट दी आई ए, किसे दी खातर दसो कीने जान गवाई ए, किसे दी खातर दसो कीने जान गवाई ए। चरखड़िया ते चढ़ना बंद बंद कटवाना बड़ा ही औखा है, सरबंस बार के धर्म निभाना बड़ा ही औखा है, मखमल छड़ के कंडे आते सोना बड़ा ही औखा है।

0: حربي سافريتهم بعد اونا ده دوست اونا ده هم سفر تي اونا دي دادا جي دنیا رچ نامہ گون بڑا جلا ہے شیرپور دے شیر گردی بڑا دا گائک رینکو شاہ دیوانہ रिंकू शाह दीवाना हरप्रीत वांग ही बहुत ही सुरीली आवाज़ का मालिक है ते इस दे नाल दी नाल उस दे हत्थां दे विच भी संगीत है उस दे गले दे विच भी पूरा सोज है ते ओ जिन्हां शब्दां नूं अपने गले दे विचों उतारदा है तां उत्थों बहुत ही सुरीली आवाज़ निकलदी है उस दे नाल ओ स्रोतियां दा मन मोह लैंदा है। रिंकू शाह दीवाना भी इस बार चरण सिंह सफरी जी दी एक धार्मिक प्यारी इतिहासिक रचना लेके हाजिर हो रहा है। रिंकू शाह दीवाना जी थोड़ा प्रोग्राम गाँवी शाम दे विच निघा स्वागत है।
1: हैलो जी, सत श्री अकाल जनाब। चरण सिंह सफरी पंजाब दे उगे शायर जिन्हां ने कई धार्मिक गीत पंजाबी मां बोली दी झोली पाए और सिखी दी सेवा कीती अपनी कलम राही, उन्हां दी एक रचना एक गीत धार्मिक आप दी नजर करन लगा हूं।

0: बहुत
1: एक लास्ट लाइन
0: थैंक यू
1: होनी है
0: जी,
1: ना।
0: थैंक यू जी, बहुत
1: नहीं
0: बहुत शुक्रिया।
1: एक
0: हाँ
1: नहीं
0: जी,
1: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं
0: नहीं
1: एक लाइन हो रहेगी जी।
0: नहीं नहीं
1: मैं
0: वो
1: जी
0: सिकंदर
1: मेन
0: क्या
1: लाइन
0: था
1: और रहेगी।
0: जिसने जी।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं
0: हाँ
1: नहीं नहीं मेन लाइन रहेगी। ओके ना,

बस दुख तकलीफां भोगणियां दिन में जिंदा कर गई मैं मर जानी मैं उस दासी मेरे निकर उस दी पढ़ दी बाणी।

अज दा कोई पता नहीं, ना पता कोई कल दा ए, जदों समें दा चक्कर चलदा ए, मेरी मेरी करके।

जदों समय दा चक्कर चलदा ए, जदों समय दा चक्कर चलदा ए, रिश्ते नाते सब तोड़ के सुटते, वो रिश्ते नाते सब तोड़ के सुटते, प्यार वफा सब जड़ तो पुटते, पीछे कौड़ी पजदा फिरदा, पता न कोई पलदा ए, जदों समय दा चक्कर चलदा ए, जदों समय दा चक्कर चलदा ए, लेखा लिखिया मेट न सकदा, हो लेखा लिखिया मेट न सकदा, की होना कल वेख न सकदा, ता ही हिरदा दुखड़े चलदा ए, जदों समय दा चक्कर चलदा ए, जदों समय दा चक्कर चलदा ए, शरण जीत प्रेम हुण विकदा ए, शरण जीत हुण प्रेम विकदा ए, नैणे हंजू सच लिखदा ए, तुर दरगाहे लेखा देना, तख्त हिजरे दा हलदा ए, जदों समय दा चक्कर चलदा ए, जदों समय दा चक्कर चलदा ए।

तेरे ते दा एहसान सारी जिंदगी मैं ढोआ, तेरे हासिया च हसा तेरे रोने च रोआ।

मैं किन्ना तेनू चाया, तेरे विचों रब पाया, कासे जोगा नहीं ए रहा, मैं बड़ा मन समझाया, मंजिल सारे कर लेनी एक दिन आपां दोवां।

एक बार ही मिलती है ये जिंदगी, काम आना किसी के है एक बंदगी। रोने वालों को जो भी हंसाता रहे, असली है।

ऐसे ही तो जरूरी है मीठे वचन, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, जुबां से

उसका जीवन तो है एक शमशान का, इस जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, उसका जीवन तो है एक शमशान का।

जिंदगी का सफर ये सुहाना बने, छोड़ दे तू अगर सारे शिकवे गिले। जिंदगी का सफर ये सुहाना बने।

खुश रहे जो सदा उसकी मौज में, दास सच्चा वही तो है भगवान का। खुश रहे जो सदा उसकी ही मौज में, दास

0: जी नी रचना तो बाद हूँ मैं फरीदकोट बस्ती साड़ी शहर है सुखविंदर कौर जी सदा देने जा रहा वो आन ते अपनी रचना लैके हाजिर हूँ। सुखविंदर कौर जी इस बार साड़े कवि दरबार दे विच जदों आ रहे ने ओ बठिंडा दे शायर कुलदीप सिंह मंगी जी की एक गजल लैके हाजिर हो रहे हैं। सुखविंदर कौर जी दुआबा रेडियो दे हफ्तावारी कवि दरबार दे विच तुहाडा निघा स्वागत है।
1: दोस्तों मैं सुखविंदर कौर फरीदकोट आप जी की नज़र मालवे की शान बठिंडे जिले का माण कुलदीप सिंह बंगी जो पेशे वजो एक अध्यापक ने उन्होंने लिखी हुई गज़ल आप जी सामने पेश कर जा रही हूँ। एक वारी जे झूठा ही तू दे जांदा तेरे वास कदे

चुप चाप पई दिसी एक पक्षी सी, माने बोये कोल सांब के जो रखी सी। पखे बिजली देने पैरां विच रोलिया संदूक।

सब दरिया खेस घबराए सी, वेला बूटे माने चावा नाल पाए सी, गद्दे बैड देने पैरां च मदोलिया, संदूक मां दा जदों सी मैं खोलिया, हर कपड़ा सी रो रो के बोलिया।